हंस की चाल चला लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, कौवा हंस की चाल चला लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा।

0: तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरा बुंदर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। मुझको की
1: अहो, पैशांची गरज आहे तर इकडे तिकडे कशाला मागायचे? आपल्याकडील सोनं देऊन नामको बँकेचे हक्काचे सोने तारण कर्ज घ्यायचे, तेही एका तासात।
2: व्याजदर 8.9% आणि शेतकऱ्यांसाठी व्याजदर 8.5%,
1: मुदत 1 वर्ष। आजच आपल्या नामको बँक शाखेला भेट द्या। नियम व अटी लागू।

0: हेलो।
1: नमस्कार, बोला। जी
0: हाँ जी, योगेश डेंगले भी मैं तरह छत्तीसगढ़ से। जी अपन को गाना सुनवा सुनना है। ठीक है, तो हंस के जियो।

0: के ना, तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो तुम्हें रोशनी किए देती हूँ।
1: मुजस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो, मुजस्सिम चांदनी हो तुम, लजाए रोशनी तुमसे के ऐसी रोशनी हो तुम।

0: हेलो।
1: नमस्कार, बोला। जी
0: हाँ जी, योगेश जांगड़े भी मित्र छत्तीसगढ़ से। जी
1: जी
0: अपन को गाना सुनवा सुनना है। ठीक है, तो है सके जियो।

0: हेलो फरमाइश, बोला ना सर।
1: मैं फरमाइश जैसी हूँ, पिक्चर का नाम क्रांति,
0: बर
1: जिंदगी की ना जुड़े लड़ी।
0: अरे वाह, ठीक है,
1: थैंक यू।
0: हो
1: धन्यवाद।
0: हो

0: नमस्कार। हाँ हाँ हाँ बेटे, आप चलो चलो चलो चलो चलो।
1: माई सिंपथीज, मुझे आप दोनों से पूरी हमदर्दी है।
2: क्या बात है,
1: दोष में तो है।
3: दिलीप कुमार, खरीद रही।
0: माफ कीजिएगा, मेरा नाम दिलीप कुमार नहीं है, मेरा नाम तो दिलीप खन्ना है, है ना?
3: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टर दिलीप खन्ना
0: जी,
3: ये जो मेरी सहेली है ना अंजू, यानी कि आपकी होने वाली
0: पत्नी।
3: हाँ।
0: जी
3: पागल
0: जी,
3: पागल, बिल्कुल पागल। 5 साल से मेरी ट्रेनिंग में है, फिर भी इसका दिमाग दुरुस्त नहीं।
0: साफ साफ बताइए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
3: 5 साल से मैं सिर्फ एक ही मंत्र इसके कानों में फूंकती जा रही हूँ, शादी मत कर, शादी मत कर, शादी मत कर। लेकिन